याला घर वया फसल वया नुकसान थी वया पर मुंजा मौला महबूब जे मिलाद जी नेमत नखस जा जैसी ताई जिंदगी आ मिलाद मलाइंदा से।

દર્શન કયો, દર્શન કયો, દર્શન દર્શન દર્શન કયો, દર્શન કયો.

अमेरिकी सदर ट्रंप जो ईरान खिलाफ सख्त मुआशी पाबंदियों हणण जो ऐलान। संदस चवण है गैर मामूली पैमाने ते मुआशी जंग ईरान के दुनिया में अकेलो कर छींदी। ईरान खिलाफ तबाहकुन मुआशी जंग जो ऐलान कया तो यह अड़ी कार्रवाई होंगी जहल तेल कें भी मुल्क खिलाफ सब का वही मुआशी कार्रवाई होंगी। मालियाती कारोबारी इदार के ईरान खिलाफ लाइफ लाइन फ्राहम कर इजाजत न डींदस। कें भी मुल्क ईरान की मुआशी मदद कई तो उन खिलाफ भी कार्रवाई कई वी। ईरान के परदेही वजीर अब्बास इराकची जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबतो। खिते की सूरत हाल ईरान अमेरिका जंग के खात्मे गडियल दिलचस्पी वारे मामलों के ख्याल की डेवट कई। ईरानी मीडिया जो चवण है खिते में जारी छिकटान के खात्मे के हवाले से अहम मामलों से मुशावरत कई वही। मौजूदा सूरत हाल जो मुख्तलिफ रुखन का जायजो वरतो वो तकरार के निबेरे लाए कोशिशों जारी रखण वेझड़ाई वारा राबता बहाल करण ते इतफाक कयो वयो। भारत में मुकर्र अमेरिकी सफीर के वलारियल कश्मीर के हवाले से तकरारी बयान से पाकिस्तान जो सख्त एहतजाज। अमेरिकी नाजिम अलमोर के परदेही ऑफिस तलब कर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया वो। परदेही तर्जुमान है पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के भारत जो हिस्सों करार देने वे अमेरिकी सफीर जो बयान रद्द करे तो। जम्मू कश्मीर आदमी तौर तस्लीम थियल तकरारी इलाको है। तकरार जो हतमी फैसलो गडियल कौमन के ठहरावन ए कश्मीरी अवाम के ख्वाहिशन मुताबिक थियणो है। सफीर जो गैर जिम्मेवाराना बयान अमेरिका के पुराने दस्तावेजी मौकफ की नफी है।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: हर चप्पा हर गोशा
0: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

ईरान जे परदेही वज़ीर अब्बास इराक़चे जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां टेलीफोनिक राब्तो, खिते जी सूरत हाल, ईरान अमेरिका जंग जे ख़ात्मे ऐं गॾियल दिलचस्पी वारनि मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾेवठि कई वई। ईरानी मीडिया जो चवणु आहे त खिते में जारी छिकताण जे ख़ात्मे जे हवाले सां अहम मामलनि ते मुशावरत कई वई ऐं मौजूदा सूरत हाल जो मुख़्तलिफ़ रुखनि खां जाइज़ो वरितो वियो। तकरार जे निबेरे लाइ कोशिशूं जारी रखणु ऐं वेझड़ाई वारा राब्ता बहाल रखण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान खिलाफ़ सख़्त मुआशी पाबंदियूं हणण जो ऐलान। सख़्त संदसि चवणु आहे त गैर मामूली पैमाने ते मुआशी जंग ईरान खे दुनिया में अकेलो करे छॾींदी। ईरान ख़िलाफ़ तबाहकुन मुआशी जंग जो ऐलान कयां थो। इहा अहिड़ी कार्रवाई हूंदी जेका हिन महिल ताईं थियल कंहिं बि मुल्क़ ख़िलाफ़ सभ खां वॾी मुआशी कार्रवाई हूंदी। मालियाती ऐं कारोबारी इदारनि खे ईरान ख़िलाफ़ लाइफ लाइन फराहम करण जी इजाज़त न ॾींदसि।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: पहजो शहर पहजो घर सकरंड आई सकरंड जो आवाज
1: GFM 90.8

घरवालू गुणन कहर में लखे बजाऊ घुमर कहर में लुभड़ा छतरा लुभड़ा छतरा लहर में नूर नाम

I'm not a man.

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि उनमें इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते
2: सिंध के माथे का झूमर
3: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान खिलाफ़ गैर मामूली आहे। ईरान खे तबाही तरफ़ ढिकींदड़ मुआशी जंग जो ऐलान। अमेरिकी सदर चयो आहे त ईरान खे मुआदो करण जो मौक़ो ॾिनो हो पर फ़ाइदो न वठी सघियो। हाणे ईरान खिलाफ़ अहिड़े तबाह कंदड़ मुआशी जंग तरफ़ वञूं पिया जेका अॻु कंहिं ॿिए मुल्क ख़िलाफ़ न कई वई आहे। तेल जी स्मगलिंग, तेल बरदार जहाज़नि रक़म जी मुंतकली, करेंसी एक्सचेंज मर्कज़नि जे इस्तेमाल ऐं फर्ज़ी कंपनियुनि जे नाले ते जहाज़नि जी रजिस्ट्रेशन जहिड़ा मामला मुआशी जंग जे निशाने ते हूंदा। ईरान जे परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची जो फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर सां टेलीफोनिक राब्तो। ख़िते जी सूरतहाल, ईरान अमेरिका जंग जे ख़ात्मे ऐं गॾियल दिलचस्पी वारनि मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। ईरानी मीडिया जो चवणु आहे त ख़िते में जारी छिकताण जे ख़ात्मे जे हवाले सां ऐं मामलनि ते मुशावरत कई वई ऐं मौजूदा सूरतहाल जो मुख़्तलिफ़ रुखनि खां जाइज़ो वरितो वियो। तकरार जे निबेरे लाइ कोशिशूं जारी रखणु ऐं वेझड़ाई वारा राब्ता बहाल रखण ते इतफ़ाक़ कयो वियो। भारत में मुक़रर अमेरिकी सफ़ीर जे वलारियल कश्मीर जे हवाले सां तकरारी बयान ते पाकिस्तान जो सख़्तु एहतजाज। अमेरिकी नाज़िम अलमूर खे परॾेही आफ़ीस तलब करे सख़्तु एहतजाज रिकॉर्ड करायो वियो। परॾेही तर्जुमान चयो आहे त पाकिस्तान जम्मू कश्मीर खे भारत जो हिसो करार ॾियण वारे अमेरिकी सफ़ीर जो बयान रद्द करे थो। जम्मू कश्मीर आलमी तौर तस्लीम थियल तकरारी इलाइक़ो आहे। तकरार जो हतमी फ़ैसिलो गॾियल क़ौमुनि जे ठहिरावनि ऐं कश्मीरी अवाम जे ख़्वाहिशनि मुताबिक़ थियणो आहे। सफ़ीर जो गैर ज़िमेवाराणो बयान अमेरिका जी पुराणी ऐं दस्तावेज़ी मौक़िफ़ जी नफ़ी आहे।
1: की बात आप गिनिए कितने कागजात पास हुए हैं सिंध असेंबली में। मैं अगर पंजाब का असेंबली का इज्जत कर रहा हूँ, अगर मैं लेजिस्लेटिव असेंबली गिलगित बल्तिस्तान का इज्जत कर रहा हूँ, तो अगर मैं तमाम सूबों के कागजात को पार्लियामान के कागजात एहतराम करूँगा तो अपना संघ का कागजात का खिलाफ कोई फैसला कर सकता। जानता हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बातें चल रही हैं।
0: नवनि सूबनि बाबति जेको फ़ैसिलो अवाम जो हूंदो उहो ई पीपल्स पार्टीअ जो हूंदो। जेसिताईं का असेंबली मुखालिफ़त न कंदी त नवनि सूबनि बाबति मां कीअं एतिराज़ करे सघां थो। सिंध जी सूरतहाल ॾिसी वठो, उते सिंध असेंबली सूबनि ख़िलाफ़ केतिरा भेरा ठहिराउ मंज़ूरु कया आहिनि। हींअर ताईं कंहिं तरमीम बाबति का शइ साम्हूं नाहे आई, उन ते कीअं ॻाल्हाए सघिजे थो। जिते इतफ़ाक़ राय मौजूदु हुजे उते फ़ैसिला इतफ़ाक़ राय सां कया वञनि। असां ज़ोर ज़बरदस्ती न कल मञी हुई ऐं न ई हाणे तस्लीम कंदासीं। इक़्तिसादी राबता कमेटी 1,08,000 मेट्रिक टन खंडु एक्सपोर्ट करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जी सदारत हेठि ई सी

घुर्जे। इजलास दौरान कर्ज एक्सपोर्ट लाइ आलमी टेंडर्स जारी करण जी पिण मंजूरी डिनी वई। नाणे वारे वजारत मौजूद ट्रेडिंग कारपोरेशन वट मौजूद 1,08,000 टन खंड एक्सपोर्ट थींदी। खंड जी एक्सपोर्ट लाइ आलमी ट्रेडिंग PPRA कानून तहत कई वेंदी। हुकूमत पेट्रोल महांगो ऐं डीज़ल सस्तो करे छॾियो। डीज़ल जी क़ीमत में 32.63 रुपया फ़ी लीटर लाथ। पेट्रोल जी क़ीमत में 2.97 रुपया इज़ाफ़ो। क़ीमतनि में फेरफार बाद पेट्रोल जो फ़ी लीटर 337.51 रुपया लीटर थी वियो। डीज़ल जी नई क़ीमत 338.06 रुपया फ़ी लीटर मुक़ररु। पेट्रोलियम डिवीज़न नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। नवां अघ 20 अगस्त लाइ लागू हूंदा। गढ़ी यासीन जे ॻोठ बाकरशाह में हथियारबंदनि जी फायरिंग। धनार नौजवान क़तल। हथियारबंदनि बकरियूं चाढ़ींदड़ 30 वरनि जे नादिर मारफाणीअ खे फायरिंग करे क़तल करे छॾियो। नौजवान जो लाश ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले कयो वियो। घर में रोज़ ॾाढ़ो

0: साईं गेड़ी खेरो में बेगारी कैनाल मां निकरंदड़ मुख्तलिफ़ शाखनि जे आबादगारनि जो पाणीअ कोर्ट ख़िलाफ़ धरणो। सिंध बलोचिस्तान दंग बेगारी पुल वटि धरणे सबबि ट्रैफ़िक मुअतल, गाॾियुनि जूं कतारूं लॻी वियूं। आबादगारनि पाक किताब खणी दाहींदे चयो त ताज़ा शाख, ईदन शाख, लुंड माइनर ऐं सेरवा गुज़िरियल 15 ॾींहनि खां पाणी न आहे, पाणी फ़राहम कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहो बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पियारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पियारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नेमत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

मौजूद बिल्कुल टिप टॉप सर्कुलर एक साथ एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद हैं बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं, पूरे पूरे एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी एक गुलजार है जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टू 1 पीएम आपको मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरत खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। प्रोग्राम में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते

हैं तो जी वक्त हुआ जाता है 11:23 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त तमाम तो लोगों की घड़ियों में बढ़ रहा है और इसके अलावा जो इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं चाहे आप बस में ट्रक में रिक्शा में कार में बाइक में जिसमें भी आप भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हाँ वो सेफ जर्नी देना अपनी गाड़ियों

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए आर्श ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो. सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो.
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं. पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है मगर इससे बचाव मुमकिन है. अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं. ये बूस्टर डोज महफूज मुअस्सर बगैर दर्द और बगैर सुई के है. मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे. मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे.
3: का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा.
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़.

हे हुसन दा मल सब कोई जाने हुसन खास जहूर जात दा है अहमद नाम सदा वे विच अरब सुना जावे जात सिफात दा है कुर्सी अर्श ते हूर मलक अक

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

ਮੌਜੂਦ ਕੀਤਾ।

0: कैसी अनोखी बात रे अनोखा लाड ला मैंने घुमाए चांद। तो ये सॉन्ग है जी
1: ओके।
0: और मेरे दोस्त हैं फराज भाई है शिखर में, जवाहर भाई है शिखर में, और ये क्या उसको कहते हैं लुंड ताहिर लुंड, और उनके वाले साथी को सलाम कहूंगा। और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सबसे सलाम।
1: अच्छा मुझे ये बताते जाएं, मुझे ये बताते जाएं कि इस गाने का टाइटल क्या है और सिंगर कौन है?
0: अरे सिंगर तो नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सॉन्ग है। टाइटल है जी अनोखा लाडला।
1: अनोखा लाडला, चलिए मैं उसको सर्च करती हूँ, मुझे मिल जाता है तो मैं प्ले करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू स्वीट कॉलर। अच्छा मुझे एक कॉलर ने रिक्वेस्ट की थी इस गाने की, तो ये वाला गाना सुनते हैं, और ये वाला गाना सुनते सुनते ना हम एक और गाने की तरफ चलेंगे, क्योंकि मुझे रशीद अहमद ने सुनाया, मैं उसको सर्च करने की कोशिश करूंगी। ठीक है,

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर बिच्चिए जो मान वधाए
3: अमेरिका जंग के खात्मे अगर इन दिलचस्पी वारनि मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾेवत कई वई ईरान मीडिया जो चवणु आहे त ख़िते में जारी चिकटाण जे ख़ात्मे जे हवाले सां अहम मामले कोर्ट ख़िलाफ़ धरणो सिंध बलोचिस्तान दंग बेगारी पुल वटि धरणे सबबि ट्रैफिक मुअतल थी वई गाॾियुनि जूं कतारूं लॻी वयूं आबादगारनि पाक किताब खणी दाहींदे चयो त ताज़ा शाह कीदन शाह डोन माइनर ऐं सेरवा गुज़िरियल 15 ॾींहनि खां पाणी न आहे पाणी फराम पियो वञे
4: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में टे ज़बरदस्त हवा रॉयल इनवर्टर फैंस साथ
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन्हनि में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके माफ़ी

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चा की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आज योग सार है आपको मेरे साथ पूरी 1 बजे तक का है. और वापस आ चुके हैं जी 12 बजे वाले ब्रेक के बाद, जिसके बाद हमारा सेगमेंट होता है दैट इज हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट करता है हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान, जिसके जानिब से आप ये सेगमेंट सुन रहे होते हैं. और आज काफी दिनों बाद हमारे साथ फिर से मौजूद हैं जी एहतसामुल हक. और एहतसामुल हक जो कि चाइना से हमें हमेशा की तरह लाइव ज्वाइन करते हैं और आज भी हमें ज्वाइन किया हुआ है, तो सबसे पहले हम एहतसाम को कहते हैं खुश आमदीद एंड अस्सलाम वालेकुम.
1: जी वालेकुम अस्सलाम.
0: जी एहतसाम,
1: मेरी आवाज
0: जी आवाज आपकी बिल्कुल सही आ रही है, आपको मेरी सही से आ रही है?
1: जी जी आपकी आवाज ठीक आ रही है.
0: ओके जी एहतसाम, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए ठीक ठाक हैं आप, खैरियत से हैं?
1: जी अल्लाह का शुक्र है और आई होप के तमाम हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे.
0: बिल्कुल जी अल्हम्दुलिल्लाह. और सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इस वक्त चाइना या बीजिंग का जो मौसम है वो कैसा है, क्या वहाँ पे रातें ठंडी हो गई हैं?
1: बहुत ज्यादा ठंडक तो नहीं है अभी, ये थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो गया है अभी जो नजर आ रहा है मौसम थोड़ा सा यहाँ पर गर्मी का. लेकिन ये है कि जो एक 2 हफ्ते पहले तक जो गर्मी थी उसमें थोड़ी सी कमी आई है दिन के औकात में और थोड़ा सा प्लेजेंट होता है मौसम. लेकिन अभी फिलहाल अगर आप कहें तो गर्मी जारी है. उम्मीद ये है कि शायद ये 31 अगस्त तक ऐसी जारी रहे और उसके बाद मौसम थोड़ा सा तब्दीली की तरफ जाएगा जब ऑटम यहाँ शुरू होने लगेगा.
0: ओके जी ग्रेट. अच्छा एहतसाम, आज हम किस टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं?
1: देखिए हमने काफी बार बात की है कि बीजिंग में या खास तौर पर बीजिंग की भी हमने बात की और चीन में भी, कि पिछले 10 सालों में जो तब्दीली हमने माहौल में देखी है, यानी आज से 10-12 बरस कबल जब लोग यहाँ आए थे वो जब अब दोबारा आते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये इतना साफ एनवायरनमेंट कैसे हो गया है. जो फजाई आलूदगी थी, हवा की ज्यादा होना, गर्द आलूद होना, डस्टी रहना, ये सब कैसे ठीक हो गया है. और जो इतना ज्यादा डस्टी होता था कि जो आसमान है आपका वो नजर नहीं आता था, नीला आसमान नहीं आता था. तो अब एक टर्म यहाँ यूज की जाती है ब्लू स्काई, कि अब आपको नीला आसमान साल के अक्सर दिनों में नजर आता है. तो ऐसा क्यों है? हम अक्सर बात करते हैं कि बहुत सारी एफर्ट्स तो हुई हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी का कितना किरदार है. क्योंकि ये रिलेट यूं करता है रुखसार के हम अपने यहाँ भी जब बात करते हैं तो हम कोशिशों पर तो जरूर बात करते हैं कि देखें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन अब दुनिया तब्दील हो गई है. दुनिया टेक्नोलॉजी के जरिए फवायद हासिल करने की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से जा रही है और उसके नतायज हमारे सामने आ रहे हैं. तो जहां ह्यूमन एफर्ट्स की बात हो रही है वहां टेक्नोलॉजी को खास तौर पर अब मस्नूई ज़हानत, जिसे हम AI कहते हैं, उसको कितना इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसकी वाज़े मिसाल हमारे सामने है. क्योंकि अब नीला आसमान कोई गैर मामूली मंजर नहीं रहा है और मेरे ख्याल में बीजिंग की जो फजाई बेहतरी है उसकी सबसे दिलचस्प बात सिर्फ ये नहीं है कि आलूदगी कम हुई है, बल्कि ये है कि उसके पीछे टेक्नोलॉजी, आदाद और शुमार और कंटिन्यूस अगर मैं कहूँ मॉनिटरिंग, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हमें अब यहाँ पर नजर आ रही है. अगर आप सरकारी आदाद और शुमार की बात करें तो 2025 में बीजिंग में 311 दिन 365 में से हवा का मयार अच्छा या निस्बतन बेहतर रहा, जो साल के तकरीबन 85.2% बनता है. इसके बरक्स 2013 की जब मैं आपसे बात कर रहा था उसके स्टैट्स निकालें तो जो शदीद आलूदगी वाले दिनों की तादाद थी वो 58 थी. और वो जो तादाद 58 2013 में थी शदीद आलूदगी की, वो 2025 में सिर्फ एक दिन रही. सिर्फ एक दिन ऐसा था जिसको हम शदीद आलूदा कह सकते हैं, यानी नॉर्मल तो आलूदगी रही लेकिन शदीद आलूदा जब वर्क फ्रॉम होम हो जाए, लोगों को मना किया जाए कि आप बाहर ना निकलें, डस्ट एलर्जी खास तौर पर लोगों को बहुत ज्यादा मुतासर करे. सबसे नुमाया तब्दीली वो PM2.5 में आई और 2013 में इसकी औसत सालाना 89.5 माइक्रोग्राम फी मतलब मीटर थी जो कि नापा जाता है कि आलूदगी कितनी है, तो वो 89.5 से 2025 में कम होकर सिर्फ 27 माइक्रोग्राम रह गई, यानी तकरीबन 70% की कमी हुई। तो ये आदाद और शुमार यकीनन ये सवाल करते हैं कि बीजिंग ने ये कामयाबी कैसे हासिल की। तो इसका एक जवाब जो है वो जदीद माहौलियाती निगरानी का निजाम है जो बीजिंग में इस वक्त राइज है। शहर में फजाई आलूदगी की निगरानी के लिए जो स्टैंडर्ड स्टेशंस हैं उनकी बड़ी तादाद में वहां पर छोटे छोटे सेंसर्स इस्तेमाल किए जाते हैं और उनसे हासिल होने वाला डेटा सिर्फ ये नहीं बताता कि हवा खराब है बल्कि ये समझने में भी मदद देता है कि आलूदगी कहाँ से आ रही है और किस इलाके में ज्यादा है। यानी जो सेंसर्स इस्तेमाल किए जाते हैं कि हवा का मयार कैसा है, आलूदा है या नहीं है, अगर तो वो आलूदा है तो बताया जाएगा कि अच्छा ये आलूदगी कहाँ से आ रही है, यानी इसका सोर्स क्या है और किस इलाके में ज्यादा है, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है बीजिंग की अगर हम बात करें। तो यहाँ टेक्नोलॉजी का असल फायदा सामने आया। बीजिंग ने पीएम 2.5 के जराए का कई मरतबा तज्जिया किया और 2025 में जो जारी होने वाला चौथा तज्जिया था उसके मुताबिक अब बीजिंग की पीएम 2.5 आलूदगी में जो इलाकाई मुंतकली का हिस्सा है वो 57% है जबकि मकामी जराए का हिस्सा 43% है। यानी अगर अब बीजिंग में जो कि एक एक काफी हद तक कम हो गई है आलूदगी उसको भी जांचा जाए तो 57% वो है जो दूसरी जगह से आ रही है और जो खुद ये शहर आलूदगी पैदा कर रहा है वो 43% है उसका जो आलूदगी है जो कि बहुत कम है। तो मकामी आलूदगी में अब क्या चीजें हैं, गाड़ियां हैं और उसके अलावा रिहायशी और रोजमर्रा जिंदगी से मुताल्लिक जो सोर्सेज होते हैं आपके आग का जल जाना या दीगर चीजों का होना या कचरे का बाहर आ जाना, ये तमाम चीजें 18% है जबकि जो इंडस्ट्रियल कहना चाहिए कि पोल्यूशन है वो तकरीबन 10-10% है। अब ये तब्दीली एक बड़ी अहम हकीकत की तरफ इशारा करती है, जब आलूदगी का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाए तो फिर बाकी मसला मजीद मुश्किल हो जाता है। यानी इसको हम यूं ही कहते हैं कि जब आप कोई गोल अचीव कर लेते हैं तो बड़े बड़े जो सोर्सेस थे जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, जिसमें गाड़ियों का फॉसिल फ्यूल पर होना था, उसको श्रिंक किया गया, इंडस्ट्रीज को जो है वो मूव किया गया तो उन इलाकों की जानिब जहां आलूदगी पर काबू पाया जा सकता है और जहां शहरी आबादी कम है। तो ये आपने बड़े बड़े काम तो कर लिए लेकिन अब जब मामलात अब ये हैं कि आपको मजीद कम करना है तो जाहिर है कि फिर छोटे छोटे इश्यूज को रिजॉल्व करना ये और डिमांडिंग हो जाता है। तो पहले बड़े सनती और कोयले के जराए जो थे उनको तो निस्बतन जब कम किया गया तो वो बड़ा वाजे था, उसको कम कर दिया, लेकिन अब बीजिंग में गाड़ियों के हवाले से, तामीरात के हवाले से, शहरी जिंदगी के हवाले से और फिर जो इसके इर्द गिर्द इलाके हैं वहां से जो आने वाली आलूदगी है उससे निमटना अब जो है वो मुश्किल है और उस पर काम किया जा रहा है। इसलिए अब सिर्फ दरख्त लगाना या फैक्ट्रियों की जो चिमनियां हैं उनको चेक करना काफी नहीं रहा। बीजिंग मस्तूई जहानत इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी मुख्तलिफ सेंसर्स को मिलाकर जो आप रिजल्ट हासिल करते हैं उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हम कहते हैं, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग यानी सैटेलाइट से आप जांचें और फिर गाड़ियों पर नस्ल निगरानी का जो निजाम है उसको एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। मुख्तलिफ इदारों से आने वाला डेटा जो है वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर जमा होता है जहां एल्गोरिथम्स जो हैं वो मुमकिन आलूदगी के खतरात की पहले ही निशानदेही करते हैं कि देखें ये चीज बढ़ रही है तो इससे ये इफेक्ट हो सकता है, ये AI आपको खुद बताता है और उसके बाद मुतालिका महकमे कार्रवाई करते हैं और फिर देखा जाता है कि उस कार्रवाई का नतीजा क्या निकला और इसमें भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। तो मेरे ख्याल में बीजिंग से जो कुछ सीखा जा सकता है वो ये कि टेक्नोलॉजी को सिर्फ आलूदगी नापने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि इसे फैसला साजी का हिस्सा बनाया गया। यानी जो नतीज सामने आ रहे हैं वो ये डिफाइन कर रहे हैं कि आपने क्या करना है और वो सब टेक्नोलॉजी की बदौलत है। पहले मसला तलाश किया जाता है, फिर उसका जरिया मालूम किया जाता है और उसके बाद कार्रवाई होती है और आखिर में नतीज दोबारा डेटा से जांचे जाते हैं कि अच्छा ठीक है जो प्रॉब्लम था हमने उसको इस तरह से हल किया है, अब उस हल का नतीजा क्या निकला है, उसके रिजल्ट्स क्या सामने आए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आई वो ये कि बीजिंग अकेला अपनी जो शहर की हवा है उसे साफ नहीं कर सकता क्योंकि जो ताजा तरीन सरकारी तज्जिये हैं उनके मुताबिक शदीद आलूदगी के दिनों में جو علاقائی منتقلی ہے یعنی ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پولوشن کا ٹرانسفر ہونا وہ 80% تک پہنچ سکتا ہے. تو بیجنگ کی کامیابی کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ صرف شہر کے اندر نہیں بلکہ بیجنگ تھیانجن جو کہ اس کے ساتھ کا علاقہ لگتا ہے اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے درمیان مشترکہ ماحولیاتی اقدامات سے اب جڑا ہوا ہے. 2025 میں بیجنگ کے تمام 6 بڑے فضائی آلودگی کے اشاریے قومی معیار پر تو پورے اترے. اب یہ کامیابی اس بات کی مثال ہے کہ کسی بڑے شہر کی فضائی آلودگی کو ایک دن میں ختم نہیں کیا جا سکتا. اور بیجنگ کا یہ تجربہ بتاتا ہے کہ آپ نے لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے, مسلسل نگرانی کرنی ہے, سائنسی تحقیق کا استعمال کرنا ہے, پھر علاقوں کے درمیان آپس میں جو تعاون ہے اس کو رکھنا ہے. یعنی ایک
2: اکثر مان جو سوال ہوں اساں کے سی پولیو جی ویکسین 10 سالن تائیں چوتھی ڈنی ونجے تے جو اساں وٹ جے کے بار ہیں اکثر کمزور ہیں ان میں امیونٹی تمام گھٹ ہوندی ہے, ہائی رسک ہوندا ہیں. ان کے علاوہ اساں جی ایریا ہائی رسک کا اوور آل پورو صوبو پورو پاکستان تاں جے کرے تاں کے ویکسین جے لائے عمر جی حد کونے کیم جگہ تے ویکسین کیم عمر تے پولیو لگی سکے تو کیم عمر تے ویکسین کرے سکے تے ریشو ودی کدن سال کے گھٹا تاں جے کرے اساں جو ریکویسٹ آئے سب جی کے بوسٹر ڈوز لگرائے.
3: پاکستان کی شان وادی مہران, مہران کی پہچان, جی ایف ایف 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।

0: जी वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है, मुझे कहते हैं आज ये रुक सा आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. और लास्ट में वापस आ चुके हैं जी, लास्ट लेंगे हमारी तो इट मीन्स कि लास्ट लकी कॉलर हमें लेना पड़ेगा 03000113488. लास्ट लकी कॉलर हेलो. वालेकुम अस्सलाम सर, दर्द क्या हाल चाल?
1: बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए.
0: जी मैं बहुत अच्छी, मुझे बताओ आज की अच्छी बात क्या है?
1: ये आज की अच्छी बात अपनी छोटी छोटी बंटी से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से टोकर का.
0: वेरी नाइस, क्या बात है,
1: क्या बात है, देखे ना.
0: हाँ जी क्या बात है. अच्छा और कुछ कहना है सर दर्द?
1: हाँ और वो भूल गई, आफिज लखनवी भाई मुझे सलाम देते उसके भी मेरे तरफ से. क्या
0: ओके जी, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखो. अल्लाह हाफिज. ये थी लास्ट एंड लकी कॉलर सरदर्द. और लास्ट एंड लकी कॉलर के बाद फाइनली हमारे जाने का वक्त भी हो चुका है. हम जाने की तरफ भी जाएंगे कि हमें जाना है. इसी के साथ

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
1: कोई आयत अदालत उबरी मरहले में समोरियो उस्ताद आऊं जिए ज्योति ए मंजूर करे केस जे बुनियादी मसले के खत्म करे छजो जेको सुप्रीम कोर्ट जे तय के असूलन जे उपतड़ा है आयन जो आर्टिकल 5 बराबर जो हक दे तो का एक सजा याफ्ता कैदी के खागे आग लगा पेल धुरन के नोटिस बन दिनो वयो अदालती फैसलो इंसाफ जे असूलन जे उपतड़ा है ता करे उनते नजरसानी कई वने।

एसादी राबता कमेटी 1,28,000 मैट्रिक टन खंड एक्सपोर्ट करण जी मंजूरी ॾेई छॾी। नाड़े वारे वफ़ाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जी सदारत हेठि एस ई सी सी जे इजलास दौरान खंड

एक्सपोर्ट लाइ आलमी टेंडर्स जारी करण जी पिण मंजूरी ॾिनी वई। नाड़े वारे वज़ारत मौजूद ट्रेडिंग कारपोरेशन वटि मौजूदा 1,08,000 टन खंड एक्सपोर्ट थींदी। खंड जे एक्सपोर्ट लाइ आलमी ट्रेडिंग PPRA कानून तहत कई वेंदी।

हुकूमत पेट्रोल महंगो डीजल सस्तो करे छो डीजल की कीमत में 32 रुपया 63 पैसा फी लीटर लाख पेट्रोल की कीमत में 2 रुपया 97 रुपया इजाफो कीमतुन में फेरफार बाद पेट्रोल जो फी लीटर 337 रुपया 51 पैसा लीटर थी वो डीजल की नई कीमत 363 रुपया 6 पैसा फी लीटर मुकरर पेट्रोलियम डिवीजन नोटिफिकेशन जारी करे छो नवा अघ 20 अगस्त लाइ लागू हुंदा पेट्रोलियम वारे वजीर अली परवेज मलक मुल्की रिफाइनरीज डीजल के अघन में घटताई बाबत वजीर आजम शहबाज शरीफ की दरख्वास्त कबूल कर वरती है ओगरा पारा डीजल के अघन में घटताई जो नोटिफिकेशन जारी किया वो डीजल सस्तो कर आवाम के रिलीफ देने की कोशिश कई पी वे वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ डीजल के अघ में घटताई से आवाम तार घट वो यो वजीर आजम तरफा आवाम के तोहफो वो रिलीफ है इंदड़ ढी में खुशखबरू मिलंदी

कराची में डेमोक्रेटिक लायर्स एसोसिएशन पाकिस्तान में सूबन बाबत बहस के मनसूई कोड से बदल फरार दई छो सूबन से बहस हवा में बहस ना उन पुठियां को बो मकसद है सूबन के नजरअंदाज करा फैसला मुड़न की कोशिश मुल्क में डफेड पकड़ने की कोशिश है। कराची में डेमोक्रेटिक लायर्स एसोसिएशन जो सेमिनार काजी जावेद चो तो जै मुल्क में आयन के मंदड़ की गाल न मनी वे वह सूरत हाल मुल्क लाय दुरुस्त ना है। बैरिस्टर यासिर शाह चयो तो पाकिस्तान में इंतजामी यूनिट सूबन बाबत बयानों कूड़ से बदल है। भारत समेत जिन मुल्क में वधीक सूबन जो हवालो दिनो वे तो उन्होंने वफाकियत जो निज़ाम ही ना है। मुल्क में बाबू सिस्टम हली रो है जो वधीक न हलंदो। आमिर नवाज वड़ा चयो तो कंहिंखे नओं सूबो ठाहिणो आहे त पंजाब या ॿियनि हंधनि ते ठाहे सिंध जो विरहाङो क़बूल न आहे।

थारो शाबर सां पसंद जे परणे तां थियल खूनी तकरार जो जुर्गो मजमूई तौर 2 करोड़ 30 लख रुपया ॾंड मुक़रर। बोट हाउस बोटी में जुर्गे दौरान पसंद परणो कंदड़ नौजवान खान मोहम्मद मस्तोई मथां 60 लख ॾंड मुक़रर। नौजवान आजिज़ सियाल खून जो 50 लख ऐं 3 ज़ख़्मियुनि जो 9 लख ॾंड मणियो वियो। सियाल दुर मथां 2 खून साबित थियण ते 1 करोड़ 20 लख ऐं 3 ज़ख़्मियुनि जा 11 लख 34.5 साल अॻु महर निसा सियाल ऐं खान मोहम्मद मस्तोई जे परणे तां जहिड़े में 3 ॼणा क़तलु ऐं 12 ॼणा ज़ख़्मी थिया हुआ।

रोड मा पंट्री डी अगम बैना गुम चल निगरी आसमा मलक वारे मामले में नो मोड़ निगरी जे पापड़ विक्रो करण वारे वीडियो कैटी न्यूज हथ करे वरती। वीडियो में निगरी चई रही है त खेस पीओ पापड़ विक्रो करण लाए बार मोकलिंदो आए। पापड़ विक्रो न करण जे सूरत में वालिद मार्केट मारकुट कंदो आए। माटली माओ भी तशद्दुद कंदी आए। निगरी जे पीओ अकरम मलक जो चवण आए त धीओ जी वीडियो पुराणी आए। मां धीओ के बार पापड़ विकरण लाए न मोकलिंदो हुयुसि। धीओ जी गोला में मदद कई वञे।

0: रोहड़ी में पुलिस असास इदारनि ऐं रेलवे पुलिस जे गॾियल कार्रवाई 8 किलो आइस क्रिस्टल हथ करण जी दावा। पुलिस जो चवण आहे त रेलवे स्टेशन भरिसां कार्रवाई दौरान गुजरानवाला वासी जवाबदार जमशेद आराणी खे गिरफ़्तार कयो वियो। जवाबदार कराची खां पंजाब ऐं कतर समेत मुख़्तलिफ़ मुल्कनि ॾांहुं आइस स्मगलिंग कंदो हो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुझो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए त इन आसान जवाब यो आ ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आयन। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है जरूरी आए। असाजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए। ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आयन उनन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चा की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं
1: जी ए एफ एम 88
0: नेटवर्क सिंध की आवाज़।

अक्सर बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं घर इस फोरम से और उनको इन्वाइट करता हूँ कि वहाँ बैठ के बात करें और जो हमारा था उनको बातचीत से तय करें।

ऐलान अमेरिकी सदर चयो आहे त ईरान खे मुआहिदो करण जो मौक़ो ॾिनो हो पर हू फ़ाइदो न वठी सघियो। हाणे ईरान ख़िलाफ़ अहिड़ी तबाह कंदड़ मुआशी जंग तरफ़ वञूं पिया जेका अॻु कंहिं बि मुल्क़ ख़िलाफ़ न कई वई आहे। तेल जे स्मगलिंग, तेल बरदार जहाज़नि, रक़म जी मुंतकिली, करंसी एक्सचेंज मर्कज़नि जे इस्तेमालु ऐं फर्ज़ी कंपनियुनि जे नाले ते जहाज़नि जे रजिस्ट्रेशन जहिड़ा मामला मुआशी जंग जे निशाने ते हूंदा। सिक्योरिटी फोर्सिस जूं बलोचिस्तान में ऑपरेशन रदुल फितना टे तहत कार्रवाइयूं जारी। वधीक पंज दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मौजूदु पंजगोर जे इलाइक़े कुली सोरान में गुज़िरी इतला ते ऑपरेशन करे पंज दहशतगर्दनि खे जहलम भेड़ो कयो। उहे दहशतगर्द मक़ामी माण्हुनि खां फुरलुट भत्ते खोरी टारगेट किलिंग ऐं आपघाती हमलनि में मुलविस हुआ। पेट्रोलियम वारे वज़ीर अली परवेज मलिक चयो आहे त असांजी कोशिश सां रिफाइनरी ॻाल्हि मञी डीज़ल जी क़ीमत घटिजी वई आहे। IFM मुआहिदे खे ॾिसंदे पाकिस्तान जी तवानाई सिक्योरिटी बणाइण इंतिहाई ज़रूरी आहे। रिफाइनरी अपग्रेडेशन लाइ बि जल्द मुआहिदो थींदो। तवानाई सेक्टर जे डी रेगुलेशन ते बि कमु थी रहियो आहे। शाम जो परॾेही वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान जे दौरे ते पहुची वियो। अॼु पाकिस्तानी तरीन सां मुलाक़ात कंदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बि दावत ते पाकिस्तान पहुतो आहे।

शहीद पायलट राशिद मेनास से शहादत जो पंजवंजाओ डियाड़ो ISPR जो चवण है तो राशिद मेनास 1971 के गैर मामूली सूरत हाल में शहीद राशिद मेनास पाकिस्तान की खुदमुख्तियारी इज्जत के तहफ़ुज़ लाए पैंजी जान जो नजरानो डिनो। सदर आसिफ अली ज़रदारी है वजीर आजम शहबाज शरीफ पारा शहीद राशिद मेनास के भेटा पेश। सदर वजीर आजम राशिद मेनास के वतन लाए बेमिसाल कुर्बानी सदाई याद रखी वी। फील्ड मार्शल सैद आसिफ मुनीर पाक दरियाए पाक फिजाया के सरबराहान पारा भी शहीद राशिद मेनास के भेटा पेश। जमायत इस्लामी जो पेट्रोलियम लेवी टैक्स ए महंगाई खिलाफ कराची में गवर्नर हाउस बहरा 5 दिन भी धरण जारी। जमायत इस्लामी कराची के अमीर मोनम जफर खान चवा तो महंगाई के इलेक्ट्रॉनिक के जुल्मन पेट्रोलियम लेवी खिलाफ है। पेट्रोलियम लेवी के नाले से शहरों से धाड़ो हयो पो वे मौजूदा सूरत हाल में पुरमन सियासी मजामत की जरूरत है। मसला अवामी जदोजहद जरिए ही हल थी सकन था। पिशावर का कोटिया वींदड़ जाफर एक्सप्रेस जेकमाबाद रेलवे स्टेशन वट सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने सबब रोकी वही। जेकमाबाद रेलवे स्टेशन इंतजामिया जो चवण है तो बलोचिस्तान रेलवे इंतजामिया का सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने सबब जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के रोको वो है। रेलवे स्टेशन से सहूलतू न होजन सबब मुसाफिर औरतू मासूम बारड़ा मर्द सख्त परेशान है।

0: कराची के एंटी नार्कोटिक्स अदालत में अनमोल उर्फ पिंकी और बेन खिलाफ मंशात केस की बुधनी अनमोल उर्फ पिंकी वीडियो लिंक जरिए अदालत में पेश थी। संदस भाव मोहम्मद नासिर और जवाबदार नसीम बीवी के गैर हाजिरी से अदालत पारा कावड़ जो इजहार। अदालत पारा बिन्हीं जवाबदार जमानत न थे जोगा गिरफ्तारी वारंट जारी। मोहम्मद नासिर और नसीम बीवी के गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने जो हुक्म। घड़ी यासीन के गोठ बाकर शाह में हथियारबंदन की फायरिंग। धनार नौजवान कतल। हथियारबंदन बकरियों चारींदड़ टी वरियन के नादिर माफाणी के फायरिंग करे कतल कर छो। नौजवान जो लाश जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले कर घर में रोज राड़ो। धोधापुर वेझो बिन धुरी में झेड़ो फायरिंग में एक जणो मारजी वयो। चिक्तान मीरामपुर वारे इलाके में बख्शलाणी बिरादरी के बिन धुरी में पानी के वारे तां झेड़ो थियो। गोलियों लगने सबब जुल्फकार बुटो बख्शलाणी मारजी वयो। लाश अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। गेड़ी खेरों में बेगारी केनाल मां निकरंदड़ मुख्तलिफ शाखन के आबादगारन जो पानी कोट खिलाफ धरणो। सिंध बलोचिस्तान दंग बेगारी पुल वट धरणे सबब ट्रैफिक मुअत्तल थी वही। गाड़ियों जो कतारू लगी वही। आबादगारन पाक किताब खणी दाहींदे चयो त ताजा शाख ईदन शाख लुंड माइनर ए शेर शेरवा गुजरियल 15 ॾींहन खां पाणी न आहे। पाणी फराहम कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
2: अक्सर मान जो सवाल हों असा सही पोलियो की वैक्सीन 10 साल तीन छो थी दिनी वे तो असके बार अक्सर कमजोर आन उनमें इम्यूनिटी तमाम घट हूँ हाई रिस्क हूँ उन असाजी एरिया हाई रिस्क का ओवरऑल पूरा सूबो पूरा पाकिस्तान तेज कर वैक्सीन के लिए उम्र की हद को कें जगह वैक्सीन कें भी उम्र से पोलियो लगी सके तो कें उम्र से वैक्सीन कर सके रेशो 10 साल का घट आ तेज कर असो रिक्वेस्ट है सभी के बूस्टर डोज लगे।
3: हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पियारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पियारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
1: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
2: सुनते रहो GFM 90.8।
3: मेरे YouTube चैनल नदीम अब्बास खान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नए आने वाले गीतों को सुनने के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाइए।

0: मेरे YouTube चैनल नदीम अब्बास खान को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नए आने वाले गीतों को सुनने के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाइए।
1: जो शहर जो घर सकरण आई सकरण जो आवाज
2: GFM 90.8

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

अभी भी लाखो सो असा प्यारो दोस्त शहर दौड़ जो वेठल रहे तो दुबई सारजा में मुझे दौड़ो कलाम आ खाद में चिंजड़ी जो आशकृषि पांजे माबू के छाप थे बेसा जे घुमत तो के डिठो मु इन शहर में कोल हु दे पो यार बुद्धि छड़ जा जेल भी

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

बिगला खुश हो असाई प्यारो दोस्त शहर दौर जो वेठल रहे तो दुबई सारजा में जो दोड़वा ए कलामा खाद में चिंजड़ी जो आशक्रिसी पाजे माबू के छापे थे।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी, बग़ैर कंहिं दर्द जे वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो, जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।

0: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों। तो मेरा नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1116 पे।
1: सुनिए

0: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे सो असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि उनमें इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

नवन सुबन बाबा जेको फैसलो आवाम जो हुंदो ओए पीपल्स पार्टी जो हुंदो जेस ताईं का असेंबली मुखालिफत न कंदी त नवन सुबन बाबत मां कीअं एतराज़ करे सघां थो। सिंधी सूरत हाल ॾिसी वठो त सिंध असेंबली सुबन ख़िलाफ़ केतिरा भेरा ठहराउ मंज़ूर कया आहिनि। हींअर ताईं का तरमीम बाबति का शइ साम्हूं न आई आहे। उन ते कीअं ॻाल्हाए सघिजे थो जिते इतफ़ाक़ राय मौजूदु हुजे उते फैसला इतफ़ाक़ राय सां कया वञनि। असां ज़ोर ज़बरदस्ती न काल मञी हुई ऐं न ई हाणे तस्लीम कंदासीं।

वफाकी सरकार बानी पीटी आहे के जेल मां इस्लामाबाद जी शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करण वारो फ़ैसिलो चैलेंज करे छॾियो। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद पारां सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख़्वास्त दाख़िल। दरख़्वास्त में मौक़ो अख़्तियार कयो वियो आहे त अदालत बुरी मरहले में समूरियो अस्तदाऊं जीअं जो थिए मंज़ूर करे केस जे बुनियादी मसइले खे ख़तमु करे छॾियो, जेको सुप्रीम कोर्ट जे तय कयल असूलनि जे उबतड़ आहे। आइन जो आर्टिकल 5 बराबरी जो हक़ ॾिए थो। कंहिं हिकु सज़ा याफ़्ता क़ैदी खे खाॻी अस्पताल में इलाज जी सहूलियत ॾियण सां फ़ौजदारी इंसाफ़ जो समूरो निज़ाम मुतासिर थींदो। अदालत जे अहिड़े फ़ैसिले सां ॿियनि क़ैदियुनि लाइ बि अणनि मुतालबनि जो दरवाज़ो खुली वेंदो।

0: आप अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहो बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
1: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पियारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पियारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त हिन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नियामत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइण लाज़मी आहे।
1: आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही। दुनिया बदलती है फितरतन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। पलती रही दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदहोशियों तक। अफसोस नहीं के अफसाने लिखे, वो अफसाने मबनी अफसुर्दगी पर। खुदा तू देता है बेहिसाब, मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर। खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब, क्यों रही बहार की कमी बस। किस्मत हमारे ही हाथ में है, उस पे इख्तियार की है कमी बस। वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं वहाँ से अब गर्द उठे। हम तो भरेंगे दोस्त, वक्त की मरहम में शिफा है, पर वक्त पे रहे मैं दोस्त, वो कब किसी के लिए रुका है। झुके ना सर फैले ना हाथ, हमारे अब बस यही दुआ है। कभी कभी आए सोच, जो हुआ वो ठीक ही हुआ है। सबर से सबक जो मिले हैं, सबर से अब मेरी सुलह है, कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा।

एक मिनट रुकी, मेरा वेट कर। ओके देन जफी भाई टेक वन, कहाँ सुना माफ कीजिएगा। शालीमार गार्डन में 5:30 बजे मेरा शूट के लिए हेयर एंड मेकअप, जल्दी मेरे शेड्स ला, लेकिन पहले चेक द पैरामीटर। गानों के बढ़ते डेसिबल, चेक पे बढ़ते डेसिबल, इट्स इनक्रेडिबल। मैं किस्मत चुगदाई, कैसे किस्मत को लाई, आई थिंक अबाउट दिस एट नाइट। Give a bash at the bad, the martial mad, the mirror instinct, animalistic, mad magician, yeah, mathematician. I never take second position, I'm getting ballistic, cataclysmic, meticulously, dekho meticulously, love mere medicinal se, love kiya maine kalam se, sach bola maine kasam se, rang dekho kaise badalte, dikhte hain sabke, karte kab se, baatein pakki, baatein kacche, I've had enough of it, but I keep going, got no option but to keep flowing, keep the toxic out of my zone, jab the sharif up me off of my throne, but before I gotta go, let me tell you this, one thing I need you to know, if you ever need a friend, you can call my

0: कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहो बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
1: हर दिन हर पहर ज़िंदगी की

शुरू से महके मिले दर्द बहुत कभी तू भी मिल दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल आज फिर आई ना तू इंतजार रहा मुस्तकिल तवील है गम की शाम कहानी मोहब्बत की मुख्तसर नजरसानी करो जरा सी कदर करो मेरी कला

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए त इन जो आसान जवाब यो आ ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आयन बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है जरूरी आए असा जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए ई पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी 10 साल जो उम्र ताई जितरा भी बार आयन उन्हन के ई बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

Super!

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही। दुनिया बदलती है फितरतन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। पलती रही दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदहोशियों तक। अफसोस नहीं के अफसाने लिखे, वो अफसाने मबनी अफसुर्दगी पर। खुदा तू देता है बेहिसाब, मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर। खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब, फिर रही बहार की कमी बस। किस्मत हमारे ही हाथ में है, उस पे इख्तियार की है कमी बस। वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं वहाँ से अब दर्द उठे। हम तो भरेंगे दोस्त, वक्त की मरहम में शिफा है, पर वक्त पे रहे मैं दोस्त, वो कब किसी के लिए रुका है। झुके ना सर फैले ना हाथ, हमारे अब बस यही दुआ है। कभी कभी आए सोच, जो हुआ वो ठीक ही हुआ है। सबर से सबक जो मिले हैं, सबर से अब मेरी सुलह है। कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है।

एक मिनट रुकी, मेरा वेट कर। ओके देन जफी भाई टेक वन। कहाँ सुना, माफ कीजिएगा, शालीमार गार्डन में 5:30 बजे मेरा शूट के लिए हेयर एंड मेकअप। जल्दी मेरे शेड्स ला, लेकिन पहले चेक द पैरामीटर। गानों के बढ़ते डेसिबल, चेक पे बढ़ते डेसिबल, इट्स इनक्रेडिबल। मैं इसमत झुकता ही, कैसे किस्मत खुल आई, आई थिंक अबाउट दिस एट नाइट। Give a bash at the bed of the mansion, mad at my instinct, animalistic, mad magician, yeah, mathematician, I never take second position, I'm getting ballistic, cataclysmic, bilkulously, dekho meticulously, love mere medicinal se, love kiya maine kalam se, sach bola maine kasam se, rang dekho kaise badalte, dikhte hain sabke, karte kab se, baatein pakki, baatein kacche, I've had enough of it, but I keep going, got no option but to keep flowing, keep the toxic out of my zone, don't get the sleeve up me off of my throne, but before I gotta go, let me tell you this. One thing I need you to know, if you ever need a friend, you can call my phone.

अकेले ही जलते रहे, भले शाम दिन चले, चलो रोशनी की सिर्फ चले, अपनी जात पे यकीन मेरा, अजाइम मुझे यकीन करे, हकीम है कलम।

0: कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।